0: वाह प्रिय मनोवा इकिया ए प्रीता
1: ला साइकी तति पिसु तनान सुसु पिसु कोवे सनंगे सापा आकु नीले ला तिंगे